हाँ तो नमस्ते प्यारे दोस्तों, अभी हम हिंदी का पहला खंड की शुरुआत में आपके आरजे डिबोरा आ गई। तो ठीक है, आप आरजे डिबोरा के साथ आज खूब सारे हिंदी फिल्में गीते और खूबसूरत खूबसूरत गीते सुनने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे कुणाल गंजावाला का सब यहाँ है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सब यहाँ सुन के। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने ख्याल रखा होगा, आज बारिश भी हो रही है, आज का मौसम सोने का मौसम है। तो सुन, उम्मीद है आप सभी अपने फोन में या रेडियो में, जहाँ पे भी आप है, हमारे यहाँ पे FM जवोय 100.7 को सुन रहे होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम सुनते हैं सब यहाँ है कुणाल गंजावाला से।

हाँ तो दोस्तों, आपने अभी जो गीत सुना था वो था कुणाल गंजावाला के आवाज में सब यहाँ है। एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग था। सुबह की शुरुआत करने के लिए मुझे लगा कि ये गीत आप सभी को एक एनर्जी वाला, मतलब दिन की शुरुआत करने का के लिए मदद करेगा। तो वैसे भी मैं आप सभी के लिए और भी खूबसूरत खूबसूरत गीत लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। अगला गीत मैं कुणाल गंजावाला की आवाजों में ही गाया गीत सबसे पीछे हम खड़े लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं सबसे पीछे हम खड़े।

हाँ तो दोस्तों, कुणाल गंजावाला की आवाज में सुनने में आपको कैसा लगा? ये तुम मेरे हो, हमको लगता है कि आप सभी को अच्छा लगे। तो ठीक है, अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं आपके SMS के इंतजार में बैठी हूँ, ठीक है? और वैसे भी बारिश हो रही है, आप लोग बाहर निकल के नहीं गए होंगे। अगर आप बाहर में हो भी, गाड़ी में हो या फिर एयरपोर्ट जा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप RJ डिबोरा के साथ 10 बजे तक इस खंड में जुड़े रहे और सुनते रहे 100.7, ठीक है? और ये तुम मेरे हो के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाबू मलिक और नयान पंकज और जोड़ी की आवाज में गाया गया एक दीवाना। ये है एक दीवाना जो है, मैंने दिल तुझको दूजा है, इस फिल्म का है। तो हम सुनेंगे एक दीवाना, तो उम्मीद है आपसे भी श्रोताओं को अच्छा लगे।

हाँ तो मैंने तुझको दिल दिया करके दाबू मलिक और नायक पंकज और जोड़ी ने बोला था, तो क्या आप लोग मुझे अपना दिल दोगे? यहाँ पे मैं आप सभी के इंतजार में बैठी हूँ हॉट सीट में, और अगला गीत भी लेके आ चुकी हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पे है कुछ भी नहीं कुछ नहीं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया गीत कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो अगला गीत मैं आपके लिए कौन सा लेके आई हूँ? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो चलिए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। गा के उदित नारायण और अलका याग्निक को मजा आया होगा, मुझे लगता है। हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक है, अगला गीत मैं आपके लेके आई हूँ सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में गाया गीत, मैंने दिल तुझको दिया। जैसे कि आपकी आरजे देबो ने आप सभी को आप ना दिल दे दिया, तो यहाँ पे आपके एसएमएस के संदेश के इंतजार में मैं बैठी हूँ। आप अगर चाहते हैं तो अपने पसंदीदा गीत मुझे बता सकते हैं और मैं यहाँ पे सिस्टम में ढूंढूंगी आप सभी के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कुछ फरमाइश की और मैंने पूरी नहीं किया है। तो ठीक है, आप तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो, फिम खुद तक खानी ला ओम उला चौनिन, बारिश हो रही है ना बाहर, इसलिए सुवांग चौनिन। हम सुनेंगे सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में गाया गीत, मैंने दिल तुझको दिया।

हाँ तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे दिल तुझको दिया गीत सुनकर अच्छा लगा हो। और ये गीत जो था सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने गाया था। यहाँ पे मुझे कुछ SMS मिला है, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। एक और गीत आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ इस खंड के लिए, वो आखिरी गीत होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ SMS ओपन करना चाहूंगी। आरजे डबरा तो कि निथाउ नुआम मो रंतिया भी कुंते अन कथाउ नुआम खोप मैं तिचुआन यहाँ पे पापा रिपु हियानिन आरजे डबरा कल लौंगाई थारेंगे इस आई ते ले तुर खा गुड बॉय मा तुआ मिशन वेंग जे ल जा मते लौंगाई था कतान अति आ तिचुआन इन ओ इन लौंगाई था ngai पो करेंगे, क्योंकि ये आखिरी गीत होगा इस खंड के लिए। मैं फिर से लौट के आऊंगी 11:20 में, यानी कि 11:20 को, ठीक है। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ FM 100.7।

मैं आपकी आरजे डिबोरा आपकी इंतजार में बैठी रहेगी, ठीक है। तो आखिरी गीत इस खंड के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए, सोनू निगम के आवाज में गाया गया गीत कुछ तुम कहो। तो चलिए सुनते हैं कुछ तुम कहो, ये गीत मैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देती हूँ।

0: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने।
1: हाँ तो दोस्तों, आपकी आरजी डिबोरा फिर से लौट के आ गई। नमस्ते प्यारे श्रोताओं को। तो ठीक है, मैं आपके लिए इस खंड में खूब सारे हिंदी फिल्में गीते लेके आई हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगे, क्योंकि ये है बेस्ट ऑफ इंडियन पॉप सॉन्ग्स। तो तैयार हो जाइए गीत सुनने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे हॉट सीट में मैं बैठी हूँ, आप मुझे SMS भेजें, आपको जो गीत सुनना है आप ख्वाहिशें करें, मैं यहाँ पे आपके लिए ढूंढूंगी। और तो ठीक है, सबसे पहला गीत इस खंड के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए, चुरी, फल्गुनी पाठक की आवाज़ में गाया गीत। ये भी एक बेस्ट ऑफ इंडियन पॉप सॉन्ग्स के अंदर आता है, इसलिए उम्मीद है आप सभी इसको एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं चुरी, फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा फाल्गुनी के पाठ फाल्गुनी पाठक की आवाज सुनने में, माफ कीजिए। तो ठीक है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे एक और गीत। बोजी कोमल के आवाज में गाया गीत है ये गीत। मैं थोड़ा रिसर्च करूंगी और फिर आपके लिए लेके आऊंगी कि ये गीत किस बारे में है। जो फाल्गुनी पाठक ने अभी हमें सुनाया था वो एक बहुत ही पुरानी गीत है, बहुत ही पुरानी गीत यानी हाँ पुरानी गीत है। तो ठीक है, मैं आप सभी के लिए आजकल की मॉडर्न गीतें भी लेके आने वाली हूँ, लेकिन तब तक आप मेरे साथ यहाँ पे FM 100.7 में जुड़े रहे। ठीक है, तो मैं अगला गीत, चलिए मैं गीत बदलने वाली हूँ आपके लिए। सोनू निगम और पूर्णिमा की आवाज में गाया गीत लेके आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम और पूर्णिमा के गाया गीत।

हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सोनू निगम और पूर्णिमा की आवाज में गाया मेरा पाव भारी हो गया, अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मैं आपके लिए एक और गीत लेके आई हूँ, आजा आजा गीत। अनामिका ने ये गीत गाया है, तो ठीक है चलिए सुनते हैं आजा आजा। और आपके आरजे डिबोरा भी आपको बुला रहे

दोस्तों माफ कीजिएगा, सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ होने के कारण मैं आपके लिए एक नया गीत रातें लंबिया लेके आने वाली हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी समझ जाए, ठीक है? आपकी आरजे डिबोरा आपके लिए एक खूबसूरत गीत लेके आई है, वो है रातें लंबिया, जो जुबिन नौटियाल नौटिल नौटी नौटियाल ने, माफ कीजिए, रातें लंबिया जुबिन नौटियाल और आशीष कौर ने गाया है। तो चलिए सुनते हैं रातें लंबिया।

दोस्तों कैसा लगा? केरा ता लंबे आवे सुनने में ठीक है। जे जाम वांग खानी का नंजाई जो या खाजाई थियम लो ते खमिन लो तिस्या जाई थियम लो जो का तो ठीक है। जे जाम आ सुप्रभात, आपकी SMS जब आता है तो हमें खुशी मिलती है और भी लोग है पापा रिपोर्ट ते वी कुंग ते ते इन मैसेज कन शेयर खान कन लिम छी ना। तो ठीक है, ये अगला गीत भी मैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम लेना चाहूंगी। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ जो गीत है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। विशाल मिश्रा ने गाया है, कबीर सिंह मूवी का गीत है। यहाँ पे हमने देखा था शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी का रोमांस। ठीक है, अगर आपने ये मूवी अभी तक देखा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्यारे श्रोताएं ये कबीर सिंह मूवी जरूर देखें। ठीक है, कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर का रोमांस देख के आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कैसे हुआ गीत, आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देती हूँ।

हाँ तो दोस्तों, ये कैसे हुआ गीत जो था फिलिशिया मार के लिए मैंने आप सभी को दिया था ये गीत। ठीक है, ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है, कबीर सिंह का गीत है, कबीर सिंह मूवी का गीत है। तो अगला गीत भी यहाँ पे आप सभी का फेवरेट गीत मैं लेके आई हूँ, जो है अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने गाया है। यहाँ पे भी हमने देखा था दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को। तो उम्मीद है आप सभी को ये गीत भी अच्छा लगे। अगला गीत आपको अगर सुनना है अपना पसंदीदा गीत, तो मुझे कृपया करके SMS भेजिए। ठीक है, अपना गीत जो भी आप चाहते हो वो सभी मुझे भेजिए। ठीक है, तो ठीक है, अगला गीत मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, अगर तुम साथ हो। तो चलिए सुनते हैं, अगर तुम साथ हो, और आप मेरे साथ जुड़े रहेगा 100.7 पर।

हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को सावन में लगी आग सुनकर आपके मन में आग लग गया होगा। तो ठीक है, अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ अतीफ असलम की आवाज में गाया गीत। और साथ ही ये जो गीत है बागी टू का गीत है, मुझे ये गीत बहुत पसंद है, इसलिए उम्मीद है आप सभी प्यारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला गीत भी मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गीत लेके आई हूँ। 12 बजे तक का मेरा ये खंड चलेगा, ठीक है, और 2 बजे मैं फिर से लौट के आऊंगी, यानी कि 2 PM को। ठीक है, दाहिनी आकर अंडे ले दो ना, RJS चॉइस का टाइम हो जाएगा। उसमें मैं खूब सारे हिंदी फिल्में गीते, सुकून हो या सुकून से लेके जालिमा तक, मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आऊंगी। तो उम्मीद है आप मेरे साथ 100.7 FM 100.7 में RJ डेबोरा के साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी के लिए ये गीत आप सभी के नाम देना चाहूंगी, अतीफ असलम की आवाज में गाया गीत, और साथ ही बागी 2 का मूवी का गीत है ये। तो चलिए सुनते हैं, और साथ ही।

हाँ तो दोस्तों, हमारी खंड में ये हिंदी खंड का आखिरी गीत था, लेकिन मैं आपके लिए एक और गीत, बदलापुर जुदाई गीत लेके आऊंगी, ठीक है? अभी के लिए मैं आप सभी को बाय बाय टाटा करना चाहूंगी, ठीक है? और 2 बजे को आप फिर से लौट के आइए RJS चॉइस में, आपकी पसंदीदा गीत और मेरे पसंदीदा गीत, सुकून से लेके जालिमा तक मैं आप सभी के लिए लेके आने वाली हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए अपना ख्याल रखिए। तो सुनते हैं जुदाई।

0: 이전 디스트릭 스테이트 리거 서비스 오토리티 근데 대포 현인 이미 미종종단 이 인홍아 하르셋는 이 헤일록 아달렛 근데 안테포 모튼 한초 체인단이 대항아 대칸 이 아닌 홍랭아 헤이 수미 쿠미 뉴 캐피탈 이 디스트릭 코트 누아 현 빌딩 아샤니나 오마타 한 아판 테 메제라 칼 테디 데카 칸 소이도아 이 voini kan heta kan ron tel the na chan po hi an ni malak na ni ti te po kha kan soi lang ve do ni
1: alo mom khop mai soi tur po in la sia chu ka ringa maro chu he kan hun te alo zo tareng maya voini ya pe ma mele ms te in hun hlu tak seng in helai huna hun min ron man pui thei he kan lom em ema ngai tha tu te po in kan hlok pui nge kan ringa hun rem chang tel omanga kan la sei le zel tu ra po ngai la lom om khup mai ngai la tu te ai win lom tho kan sei non le ani ole chu ti jong su tun trum live interaction huna kan hun man thei te chu alo ni le ta a in zawai chunga ngai la tu te chunga lom thu kan sei e
2: हेलो हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आज का हिंदी का आखिरी सेगमेंट में, फर्स्ट ट्रांसमिशन के आखिरी सेगमेंट में हम आ गए. आपकी आरजे डिबोरा आपके लिए फिर से लौट के आ गई, और ये है आरजेस चॉइस का वक्त, यानी कि मैं अपने पसंदीदा गीत आप सभी के लिए लेके आई हूँ. तो उम्मीद है आप सभी मेरे साथ FM 100.7 पर जुड़े रहेंगे. तो सबसे पहला गीत मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, सुबह लल्ला गीत. ये जवानी है दीवानी मूवी का गीत है, जहाँ पे हमने देखा था रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को. तो ये जवानी दीवानी में जो गीत, सुबह लल्ला गीत जो है, ये प्रीतम ने गाया है. तो चलिए सुनते हैं सुबह लल्ला. और ये गीत मैं वेंडी इलशाद की मी के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी. उम्मीद करती हूँ कि वो वहाँ पे सुने, कलकत्ता में. तो ठीक है, चलिए सुनते हैं सुबह लल्ला गीत.

हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सुबह लल्ला गीत सुनकर? जैसे कि मैंने कहा था कि इस खंड में मैं आप सभी के लिए खूबसूरत हिंदी फिल्मी गीतें लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो गीत मैं लेके आई हूँ आपके लिए, फिर से सुकून गीत। ये गीत जो है मिजोरम में भी सभी लोगों को बहुत ही पसंद है, सुनने में आया। ये सुकून गीत जो है ऑथम्स ने गाया है और इसका मतलब है पीस, ठीक है? सुकून उम जखसु हादम ना दिना खानी आ। तो उम्मीद है आप सभी प्यारे श्रोताओं को अच्छा लगे ये गीत सुनकर। और ये जो गीत है सुकून गीत, मैं सभी प्यारे श्रोताओं, मेरे दोस्तों और सुनने वालों के लिए उनका नाम करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे मूड में इस गीत को सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं सुकून।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था हम सभी का फेवरेट सॉन्ग सुकून। और ये जो सुकून गीत है, मैंने जैसे कि पहले बोला था कि मिजोरम में भी बहुत से लोगों को ये गीत बहुत पसंद है, तो ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है। उम्मीद है आप सभी को सुकून सुनकर सुकून मिला, ठीक है, सुकून मिला होगा। तो अगला गीत मैं लेके आई हूँ यहाँ पे आप सभी के लिए, जालिमा। ये जालिमा गीत मुझे बहुत पसंद है, रईस फिल्म का गीत है और ये अरिजीत सिंह ने गाया है, जहाँ पे हमने देखा था शाहरुख खान को। शाहरुख खान को तो आप जानते ही होंगे, तो चलिए सुनते हैं जालिमा।

तो दोस्तों, जालिमा गीत मेरा फेवरेट सॉन्ग में से एक है। और अभी मैं अपना फेवरेट सॉन्ग आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो अनूप जैन का गीत है, गाना है। मुझे बहुत पसंद है ये गीत, बारिशें जो है, बारिशें है इस गीत का नाम। उम्मीद है आप सभी को भी ये गीत अच्छा लगे, क्योंकि ये बारिशें सॉन्ग मैं हमेशा सोने से पहले सुनती हूँ। हर दिन 2 या 3 बार जरूर सुनती हूँ। इसलिए चलिए सुनते हैं बारिशें। आप इसके लिरिक्स को ध्यान से सुनेगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपकी आरजे देबोरा हमेशा यहाँ पे आपके लिए तैयार है, बैठी है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं अनूप जैन का गीत, अनूप जैन का सॉन्ग बारिश है।

हाँ तो दोस्तों, मैंने आप सभी को अपना फेवरेट सॉन्ग सुना लिया, जो था अनुव जैन का सॉन्ग बारिशे। और उसी में से मुझे अनुव जैन के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत ही मुझे सुकून मिलता है उनके गीतों को सुनकर। ये जो गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अगला गीत वो है जो तुम मेरे हो। ठीक है, जो तुम मेरे हो, ये भी अनुव जैन का ही सॉन्ग है, उन्होंने ही कंपोज किया है। और ये आखिरी गीत नहीं है, लेकिन होने वाला है। ये आज के लिए मेरा हिंदी का आखिरी खंड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। और यहाँ पे SMS आया है, इन SMS से ही कैन शेयर लो कंगा आरजे दे बॉय ल थन तो जोंग जोंग खा आरजे जोंग जोंग ते तान ले नंग मा तान सियल दे विन कलो खंगे कलो लाने अतिनी ओ ति चुआनिन तुना कहला ते जोंग जोंग ही कलो कहला रन प्ले ले तो जोंग जोंग ही इन जवाई तान ngai thatu zong zong te tan khan gan ron hlan ngala jo tum mere ho।

दोस्तों, इस खंड का आखिरी गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब 2:30 होने वाला है, 2:30 बजने वाला है, यानी कि 2:30 होने वाला है, इसलिए मेरा खंड खत्म हो रहा है। तो ठीक है, मैं आपके लिए आखिरी गीत लेके आई हूँ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, हम फिर से मिलेंगे, मुलाकात होगी हमारी फिर से। आपकी आरजे दिबोरा चाहती है कि आप ख्याल रखें अपना। तो ठीक है, ये आखिरी गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सैयारा, जो सैयारा मूवी का गीत है। तो चलिए सुनते हैं सैयारा, और मैं आप सभी को इसी के साथ बाय बाय टाटा करना चाहूंगी।

0: That was Justin Timberlake with the song Like I Love You, and with that we're in the segment of Western music broadcaster from Akash Vani Aizol. Hey Akash Vani Aizol ani tlai dar thumania chanchin thar hindi chair deli milak choni longai thang u
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ओमान तट पर टैंकर एमटी सेट्टेबेलो पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के बाद ये बातचीत हुई। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। केरला में स्थित प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर कल से मलयालम माह मिथुनम की पूजा के लिए खुलेगा। तांत्री कंदारारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में मेल संथी ईडी प्रसाद शाम 5 बजे गर्भगृह के द्वार खोलेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वलबुई। आज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज पूरे दिन आपने बहुत ही मौज मस्ती किया होगा, क्योंकि फिलहाल हमारा ये जो मौसम है मौज मस्ती करने का है। घर में अपने प्यारे पकोड़ों के साथ गरम गरम चाय पीने का मौसम है। बहुत ही बारिश हो रही है बाहर में। उम्मीद करती हूँ आज का दिन बहुत ही सुहाना गया होगा आपका भी। एंड यस, मेरा भी बहुत ही अच्छी तरह से गया, क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। एंड रेनी सीजन तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। रसूर बोआम बो मैं वहीं से तेरोवा नुआम तेरेंगे रसूर ही के सु नुआम का त्याग से बंसवानी नहीं अब इक तकिन रोआन सूर पे ही चुआन खुआन छ्या पे चुआन इन के चु हे इन इन लुमा मानी स्याम गे मे थिल तुई एंगे ए कन थियाम अंग अंग ची मो पकोड़ा ते पोन यांग छु खत्यांग ते चुआन इन हे थिंग पुई तुई तक ने मे हि ने ने हन इन टीवी हन ए ने ला मूवी हन एन दे हम हम बुकिला चु चका दो थु साम हि नि छि न मो चुवांग चुआन इन वो इन हे खवा अन छे छवा इन नंगनी पो इन लमाते इन लुमाते नोम करिंगा हुन नोम तक हुन मो नोम तखा इन लो मन वेखा कन बे से नि छु चोनिन ओ का कछियान दु तक तक ते एसएमएस लमा ओ खोहारमिन नेम छिन तु ते विकुंग ते ते मिंग मोय ते आंगा ते पा ते वीएला ते ओ ए तम्मे तम्मे इन इनशिया छुखा ओ इन रन लन सुर छुखा का बे से ओ स्टूडियो आ हियान इन आ इन एसएमएस का कलो थिर का छिंग मि मिंग मोय चा दिला का इन थासों वे दे ओंग रेंग बक्सिया का पलंकार चा हियान इन कलो कलो थिर दे दो छु ने दिखा का नन सोई दु नि ओ ओके, चलिए इस खंड की सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं एक बड़े ही प्यारे गीत के साथ। यह है सोनू निगम की आवाज में, कभी तुम लगे जिंदगी।

आकाशवाणी आइजोल एफ एम जा पॉइंट पसरी अटंग पुआन तुना चुन पुआन तो अंखान जाए फकीन तिहुन कन मंगदो आरल रोड फेली ख्रिस एम एस डों की मते जाए गाई सदो निदा रुगले चन वेथेंग हुन कन ने आरल रोड फेली एमओ ख्रिस एम एस डों की महलस सक ngai thak chak luttuk ka ngai thak lo chong ka puman na zel tiang che kamo ka tiang khain nei nei chan athan hun lai takani e ti chuan in arlal ruat feli zai kan ngai thlamas zo ka nga ani hian vuina tur om lo ti tarun sa dawn ani

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम। कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
2: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
2: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
2: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंश्योरेंस मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
2: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी। 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना

0: सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं है, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। वो पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया। और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में।

0: नोट किया तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी। वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे वाली मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े

0: मीटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैं कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दुमरों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो भी खो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, ये सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब

0: प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
1: मैंने मोदी सर ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया

0: जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन आधार मोबाइल ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
1: नहीं सकता।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखे कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना

0: पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: कंगाई थाक ता खा स्पेशल सीरीज बाय NSD आकाशवाणी ओम 12 years of government tenure on Soito Kha Jyotiraditya Sindhya, Minister of Communication and Development of North Eastern Region ani a Delhi changalak chho nani

नमस्ते, आकाशवाणी FM जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वाल वही ओ गंधु नलो इंटरन नेता वाहन खात फर फर तक एम त्रोजानी कनी तोंदान मे मे छु अमाय रो छु इन लो लंग मिंग करंग ति खा करिंग आ छन छु करन लेत ले हुन खा कलो सोई लोक तो आ छुवान छुवान खोंगे कने एसएमएस क्रू हो खा इन रन लंग छुवाई छुवाई तुरा गंगाई ओ नंग मानी हा पा छुइन इन एसएमएस हा पा इन लमोई देउ मेग्रम प्ले दोना इंदु दोन हियान कश्यामो हेला ही। ओ चलिए दोस्तों, इस खंड की सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। और इस गीत के बोल है, जाने दिल में कब से है तू इन तिकटिंग एक थिन लुंग आया निलो ओम ट्रन मो ओए जोना खा तमलु तुकरी इंदु ना इन मंगाई ना खारोन पियांग।

दोस्तों, कैसा लगा ये गाना? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे याद है इश्क विश्क का जो ये फिल्म है, हमें बहुत प्यारा, स्पेशली हमारे स्कूल डेज में जब ये रिलीज हुआ था, मुझे बहुत पसंद था। एंड उस वक्त मेरा एक क्रश भी था, जिसके जिसे सोचकर मैं ये गाना याद करती थी। वो दिन मुझे याद आ गया। तो चलिए, नेक्स्ट हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, जारी रखते हैं। हम सुनेंगे समा सल्लू जी और प्रीता प्रीति जिंदा के ने जिस फिल्म में किरदार निभाया था, एक बहुत ही क्यूट सॉन्ग, हर दिल जो प्यार करे, फिल्म से है आते जाते जो मिलता है।

इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। कैसे वक्त इतने जल्दी बीत गया पता भी नहीं चला। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग मैं प्ले करूंगी इस आखिरी खंड के लिए। एंड इन एस एम एस मेरो इंग्लिश सेगमेंट हियान इन और फेसबुक लमा खान इन लाइफ इंटरेक्शन खा उमदोना फेसबुक लमा खान इन लंग चुर चुर दोनिया ओ साफला मोई तक तक नेन खान इन इन ओइदो ननी लाइफ इन मो दिसवान एसएमएस मिनो थोन तु जोंग सोंग ते चुंगा लोम थुक सुया हेलन नुंग बेर ही एसएमएस मिनो थोन तु जोंग सोंग ते तान खान इन करोन लान फिकनी ओ स्वान इन तोन ले फत कन तुमंगा जेरल सा महियानि नेगे रन आ एंगे रन थोन नि आरजे जोल बोइजानि नि सेगमेंट सु इ सेगमेंट सु segment ni chia moi chan don da lung oi thak lo ve zani duty dan chu duty pakar chi ang kha kati me jilal zam it mi hi lo chi kru thia mania ka di ku ka duty ka segment za te kha lo chiar thlap me mo engle khole ge chu kal eng ki ma hen lung oi ze li ka tum top me ni mo jilal zam ka vui ve pe lo eng ma hian mo chu chu lom na hlim na ni mai तिचवानी ये जो सबसे आखिरी गीत है मैं आप सबके लिए प्ले करूंगी। एस एम एस मिरोन थोन तु जोंग सोंग ते तान खान इन तू न कल नुंग बेर ही प्ले सक दोन से बाग चो दार कॉलेज सन वेटिंग इन फेसबुक ऑल ऑल इंडिया रेडियो पेज आ खान इन कनी मुठे उदोन ने ओ साफ लमोई तक तक नैन कन आर जे थे नैन कन इनको ओइदो ननी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम जो 100.7 आपके साथ है आरजे इजवाल बोई हेलमोय तक में नूताना स्पेशली नूतताना ला मो एम एम मई नि आ इन जवाय तान इन नुले इन पाते इन छूंग तान इन मंगई ते तान खान करोन लन सकचे नि आ इन जवाय इन मंगठा मुतुई शुभरात्रि गुड नाइट।